0: गला क्रिक निरिया कसना पाए साथ आप मैं सेवा करता के कायमान नानक जिसनो लगा तिसमले लगा सो प्रवाण महला दूजा
1: जो जी हो सब मुख कहवो विजय बिख

जियो मैंने सब तेरा कहना न के सब तेरी वड़ियाई वर कहना न के सब तेरी वड़ियाई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हे निमल दे माल सतगुरु नितल दे तालनी उठी आदि ओट नि आश्रय दे आश्रय गुरु गरीब ने वाजी आप जी दा जरूर कीर्तन कर दे हम यहां सबद बैठा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिना जिना मैं पौलो सबद बैठा जरूर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी सपना दिल खिलावणी चढ़दी कला बख्शनी गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा बोला सको सबद प्यारियो जन्म मरण किटे मुख जी सदा सुखी नानक सिमरति कराम कलि मोहल्ला।

जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जाप हर भव जल तरना बेसुमार अथाह अगनत अतुला ज्यो बुलावहु त्यो नानक दास बोला ज्यो बुलावहु

अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे है तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी।

एक ज्ञान के विहीन छेन कह सके तरत है। भूत बन चारे छित छौना सब दूधा धारी पौन के आहारी सोब जंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया तित कौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंच की बडैया देत बगला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जते बड़े ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे अस न प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदिस फिरैया तैत भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जग आग के फछैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सबे देन चारी रिखी के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूढ़ पीड़त न कूड़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रख रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल

नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा शीतल न सूर स्थित पत तेज इंद्र सो न राज भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्म से न वेद चारी सनत कुमार से तपसन अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मार विषण के ते वेद और पुराण के ते सिमृत समूहन के होय होय बिताय है। मोरती मदार कित्ते असुनी कुमार कित्ते अंसा अवतार कित्ते काल बस भय है। पीरे औ पिगंबर कित्ते गने ना परत ते भूमि हित होय के फेर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया गई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीप औदलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान बुझ दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कबट बेस पोसती अनेक ता निवावत है। शीस काओ का भयो मल जो पे काटत अनेक डंड सो तो ना डंडौत अस डांग अथ तीस काओ। कहाँ भयो रोगी जो पे डर रहे उर्द मुख मन ते न मुंड ने हरायो आद ईस काओ। कामना अधीन सदा दामना प्रवी ने एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस काओ। शीस पट कत जाके कान में खजूरा धसे मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के सोक सौ। आग गोचरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न भूक सौ। कहाँ भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जो कुसाओ। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भिड पर लोक सौ। नाचुई करत मोर दादर करत शूर सदा घन घोर घन करुई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जो किया बैरागी बने कबूँ संन्यास भेष बन कह दिखावई। कहूँ पावन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैर लगावे बारी कहूँ दंडधारी होय के लोग न भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सु ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीतर पुकारे पर शीत काल कुंचर औकाद अनेक दा पुकार ही। कहा भयो जो पे काल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर डाकु ठारन सो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहते जो पे पाइये तापना तो तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए ते जो पे पायत जाप देव पूजना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़ते जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरते गत राण की परत कर पताल के बस क्यों भुजंग न तरत है। कौ भयो मुंडिया सन्यासी कौ जोगी भयो कौ ब्रह्मचारी कौ जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजे इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीब सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही के सेव सब ही को गुरु देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है। देवता देव जज गंधर्व तिन तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आब को रलाओ है। अल्लाह अफेक सोई पुराण ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मछ केत उनको करत भच केत अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केत नाभ बीच अच पछ को करेंगे भज के तक प्रत हो पचा।

तेज मय तेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअ पे जड़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बटे बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआ चार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मटली बहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित।

न लोभं न चोभं भूतं फेकं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्व दर्शनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनीय छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न परमं सदेवं सदा सिद्ध बिरधं स्वरूपे नमो एक रूपे द्रयोक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापय युक्तं गच्छयाद विक्तय यथा विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न वर्मं न सर्मं न साके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न बुद्धं स्वरूपे नमो आदरूप

ग्रहण कहूँ देह दुखं कहूँ औखति रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जाच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातगी तामसी हों कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हों कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोग तंग कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतंग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हों कहूँ जाच विद्या धरे मानवी हों कहूँ राजसी हों कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्टि की वृष्ट की ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मत्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं।

कहूँ सुध से खंगहूँ ब्रह्म धर्म कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्म कहूँ ज्वाल स्वरूप जरा रहत देहंग कहूँ नेह देहंग कहूँ त्याग ग्रहंग कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ अरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाग्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेच भाख्या कहूँ।

तेज अनकुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान।

नेद उचरंत वेद जे अलख रूप कथत कते जेहे अलख रूप आसन अडोल जे अमित तेज अक्षय अतुल जे ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत तुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्द बाह देशन भ्रमंत कई उर्द मध्य पावक चुलंत कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई गोग काव कथत कते कई अग्न होत्र कई पवन हार कई कर

तीरथ भर मत सोभरम कई अग्निहोत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदपदास पायतन पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कही सिमृत शास्त्र उजरत सो करम न्योली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान। कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जाच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कही बचत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जन निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायतन अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तदपदिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग दान बिन

छत्री छत्र चितं जेह राग न रेग न रोग वणं जेह द्वैख न दाग न दोख गणं जेह अंड ते ब्रह्मंड रच्यो दस चार करी नवखंड सच्यो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंध रूपिंद नगिंद नगं श्री जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल पिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंड सेतज उद्भु

भुवं तेजं पह किन्नर जाच जुवं नर नारण पुंसक जह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर थादक बांध गणं भव भूत भवेख भवान तुवं जय अंडज सेतज जे रजंग रज भूमा काज पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल।

भूत छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे सोख न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आज सरंग जे बंधत देव देव नरंग गण किन्नर जाछुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूरम तंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जम

अनाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा, गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानी है, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है, न रोग राग रेख है, अदोग दाग दग है, अभूत भ्रम भेक है, न तात मात जात है, न पाद चिहन वरण है, अदेक से गेक है, सदीव विश्ववरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेख विश्ववरण है, जिमी जमान के विगे सदीव कर्म भरम है, अद्वैग है, अभेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख आन मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराने औ पुराण नीत नीत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न ब्रह्म में बताइए, गंज आदि देव है कहो सु कैस पाइये, जिमी जमान के विगे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान

न सिंह है, न स्यार है, न राव है, न रंक है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संक है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साको कुमार है, न ने है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न

न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेद है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंक है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है।

है प्रमात है, न सीत है, न सूच है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नरक को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अपरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, वली रूप राग रंग है, न द्वैख है, न भेख है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात।

छे प्रताप बेखिया न करम है न भरम है न धरम को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को लाव है न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितस्पति तपस्पति जपस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखिये बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिये अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल।

रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सोधरम करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बसे सब ठौर में निर्धार जात पात ना ताज जाको मंत्र मात ना मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजे चक्र।

जस किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकार ही शिव शक्र ओमुखचार सर्व सबत बद मुरते अताप जंत्र मंत्रण आवई कर तंत्र मंत्रण कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जस गंधर्व देवदानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के विराज शूद्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भी कर

पार भूमका जले तले महमानीय जय नाम। दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम, दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद। मित्र पालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद। अघाओ दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हर्ता विश्व भर्ता आद रूप अपार। दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देव खंड, भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड। श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार, आद देव पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रा।

एक समय श्री आत्मा उछरियो मत्स्यो बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विध तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहा सृष्ट को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा जीतव कह मरण है कवन सुरक कह नरक को सुकुटा को मूढ़ता कहा तरक अवतरक दोहरा को निंदा जुत है कवन कवन पाप का धर्म कवन जोग को भोग है।

आसुरी बिहंडन दोष निकंदन पुष्टि उदंडन रूप ते चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्रभुंड सन महक मथे दान प्रहार नरक निवारण नदम उदारण उर्धे जय जय हुसी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन आदि प्रते डावरू डवंगे बर्ब वंगे भुजा भरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन बिमर्दन काल सुरंग अष्टायद जमके भूखण दमके अथित जमके फुंक फनंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनीत मंगण धुजा फरंकण फणी फुंकारण ज्योत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हुसी मै खासुर मर्दन भूम आकाशन उर्धे दामनी प्रहासन सुचम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन ज्योत ब्रह्माचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हुसी मै खासुर मर्दन पाप बिना संधरम करे अख ओख निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हुसी मै खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण छोर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ वी प्रदंते जोग जयंते मर्ज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणा संचंत प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होशी मैं खासुर मर्दन भरम बिना संधरम तुझे घुंगुरू खमंकण सहस्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम तुझे अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुध सन्ना है अगमथा है एक वृत्ति जय जय होशी मै खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृत्ति सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरू कुमारे अदम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय होशी सब ठौर निवासन बाये पताल आकाशन ले संकटे निवारण नदम उदारण तेज प्रकर खण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हुसी सत प्रकर खण आद अनिल अगाध अभे चांचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर कंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन संभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच बिचो बिसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से सुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंच

सुर नर प्रतिपारण पद दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे। जय जय उसी मैं का सुर मर्दन भेसो विध्वंस सृष्ट करे। दामनी प्रकाशे अंतरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर वर खंड दोष प्रतर खंड बितल तले। अष्टायद बाहन बोलने बाहन संत पनाहन गुड़ गते। जय जय उसी महका सुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रते। दुख दोग प्रवचन से वगरचन संत प्रदर्शन शुद्ध सरे। सारंग सन्ना है दोष प्रदा है अर्दल गा है दुख हरे। गंजन कुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते। जय जय उसी मैं का सुर मर्दन साध प्रदर्शन दुष्ट हंते। कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली धुंध मते। अष्टायद जमकण सहस्र जमकण दामिन दमकण आद प्रते। डुक डुकी दमंके बाघ बबंके भुजा फरंके शुद्ध गते। जय जय उसी मैं का सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते।

करुणा निधान कारण स्वरूप जे चल ज्ञान नहीं रंगा रूप स्वरूप जे चल नहीं कहिंगे काल रूप जे जे तबे करि पार सब जोड़ जन में नहीं करत स्वरूप बुद्धं को बाल जे रंग रूप जे रूप जे नहीं पंग जातन जे जे जे ने जे नहीं राम कटाक जब तब में नहीं बन तन दुरंत जे ने जे में सीते न उच्चरण दुरंत जे ने जा ने जे पर पात्र नहीं ना दुख जाता होता परमार दीना दुख जाता होता ਕਈ ਗੋਡ ਇੰਦਰ ਜੇ ਬਾਨਾਰ ਗਏ ਗੋਡ ਰੁਕ ਦੇ ਕੀ ਆ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵੇਦ ਗੁਰ ਸਰਨ ਮੰਗ ਨਦ ਬਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਬਿਲਸ ਦੇ ਨਮਚਰੰਤ ਜਨ ਬਚਰੰਤ ਬਦਰ ਸਾਧ

वेद पुराण कते पुराण हासे वेद पुराण कते पुराण पे प्रभाव बिना पद से दो पद में प्रभाव है आज अनंत का बताई सो भूत भगत भगवान है अंत को इन में कदम मार पाता है दो कृष्ण राज रहमान लोग न के करता है तंदल में तंदल भरता प्रभु है दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद महापते है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोध

पाए सके नहीं पार। उमापद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितो सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पचहारे। भेद न पाए सके हो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे। याद अनाद अगाध वेगद वैख जप्यो तिन ही कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिरो कर भेस्त बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्य के छलैया महासतरण के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्व बिना पार पावे।

फरा के फिरंगी माने कंधारी को रेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है मराठा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वैद्य नंगे पहचाने धर्म धाम है बंगाली फिर हंग के फिरंगा देश के मंगेल वीर बंग से बुंदेल पाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे चीर मचीन के शीस ने आवे ते बते दे आए दोख दे के दलत है जिने तोय जायो तिने पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहुबे नदीन सादा दीन कहियत है पाई अपार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है हाथी की पुकार बल पाछे पहुंचत ताहि चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख जार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है किते ससरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दाहियत है किते महादीन किते व्यास से प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है करते हैं विचार पैन पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूर्ण अवतार निराधार है न पार अवार पाइये न पार पे अपार के बखानिये अद्वै अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूं के राशि है अनासी के मानिए जंत्र हूं न जात जागी बाप हूं न मायता की पूर्ण प्रभा के सुचटा के अन मानिए तेज हूं कुतंत्र है के राजसी कुजंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिए तेज हूं कुतार है के राजसी कुसार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता के बासी है जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को बास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सार है जान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है ननर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई न पार पारावार हूं को पार जग की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हबसी हल विद्यावे पूर्वी न पार पावे असत्य नाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाथ अद्वै अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रभु।

राजन बाहु अमित बचाओ अमित रोशन हाथ करुणा निर्भान करुणा जगत प्रफुल्ल सुंदर सुजान।

फिर जिहड़े परिवार दे विच जिहड़ी कुल दे विच महाराज जी ने अवतार धारण करना है, क्योंकि कुल भी प्यारियो कोई भी महापुरख जिहड़ा हुंदा सतपुरख हुंदा उहदा जन्म जिहदे घर दे विच हुंदा उहदी मां आपां पढ़दे ना धन धन पिता धन धन कोला धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। जिसने गुरु नूं जन्म देना कीता ओ माता भी धनता।

सचे पातशाह जीओ महाराज आप जी दे पावन पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचलनगढ़ साहब जी विखे शामा दे दीवान सजाए गए हन। सजे हुए पावन दीवाना दे विच गुर इतिहास दियां कथा विचारां होईयां कथा विचारां करदियां बेअंत गलतियां हो गईयां जीओ माफी बख्शनियां के तो समताईयां संगतां दियां हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करदियां जो जी आप जी के द्वारे आवे सो सदा।

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाव हर जिन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै त्रपता सह मल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए दृग जीव दृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लखिया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जिन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाए ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाव जन पिता लोक सुत बंता कोए न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भव करिया ऊडे ऊड आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करिया सब

अनंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर ध्यावे हर ध्यावे तुद जी, से जिन जुग मह सुख वासी, से मुकत भय जिन हर ध्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ ध्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेविया जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडियावर ना कोई। तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहचल करता सोई। तुद आपे भावे सोई वरते जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सृज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानो

माथा श्री अस्केत जगत के नाथा दुतेबान सौ दौवर कर काठ दयो असदुज नर नाहर पुनरा छसका काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रष्ट गगनते भई सभैन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब नवाजा अखल भवन के सर्जन हारे दास जान मोह लेहो उबारे कभी उबाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सभय तुम घावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सख सभय कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संघरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दय मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया हो जो सदा हमारे पच्छा श्री असधुज जो करिय हो रच्छा राख लेहो मुह राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा पप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जावुद करख करा कर तारा प्रजा धर तब देहे अपारा जब आ करख करत हों कब हूँ तुम मैं मलत दे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम नरंकार नरबकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूढ़ कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदास निरंकार का छीनत नह भव आप आपनी बुद्ध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोह तेती तुमरा लखान जाए पसारा कह पिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं समट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयं भव
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच्छ करो रणघाता। जे अस दुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार धिया है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक महर हो। रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांस ते ताहीं उबारा। जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तमें शरण तिहारी, आप हाथ दहले हो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अजध्वज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशद फल पावे सोई, दुख नात सह व्यापत कोई। अडल

कह चौपाई सम सतरै सहस भणी जय अर्ध सहस फन तीन कहे जय भादव सुधी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

किंकर थारो अपना जान करो रखवार। बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय छुंचन सत्रह मारे मरिय। देग तेग जग मैं दौ चले राख आप मुहे और ना दले। तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान आप ना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा।

दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भगत नेत सुर्ग वास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवै बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज सकह न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड वरी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लौल हो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर सत द्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा पर संग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरा।

0: सतनाम सतनाम
1: श्री
0: वाहे गुरु
1: श्री वाहे गुरु
0: साहेब
1: जी
0: दीन की प्रतपाल करने
1: सन
0: उबार गनी मन कार
1: गनी मन कार
0: पशु नग नाग नराज
1: सब
0: समय सबको
1: प्रतपार
0: है जल में थल
1: में
0: जल में थल
1: में फल में
0: कल के
1: नहीं करण
0: विचार
1: के नहीं
0: करण विचार
1: दीन
0: दयाल दया
1: ने
0: दिया
1: दोहन देखत
0: है
1: दोहन
0: देखना।

सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदगुरु जी का प्रणाम सदग

दान में डाथ लिखा जमिलेता मस्तक लाई है कुड़ा लाल छटिए होए एक मना लगती आई है फलते हो पाइए जेवे ही कार कमाई है जे होए पूर्व लिखिया।

राम नाम देव सुर नारायण राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम नाथ राम ना

लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां लकड़ियां

0: मन का सुतक लोभ है, जेवा सुतक कूड़क की सुतक वेकना पर त्रिय पर धन रूप। कन्नि सुतक कन पहला तबारी खाए, नान खन सा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला।
1: सबो सुतक ब्रह्म है दूजे लग जा, जमन मरना हो